0: registered an FIR on grounds of culpable homicide under the relevant sections, and the authorities are also looking to register a lookout circular against the hotel owner Lovekesh Bajaj and one more accused so that they do not flee abroad. Now, horrifying images from the incident have shown people jumping out of the windows in the middle of the blaze in thick smoke. Mattresses were spread on the ground to cushion the people who were trying to escape. The hotel that is located in the narrow lanes of Hawz Rani was owned by Lovekesh Bajaj. Reports say that hotel Flourish Stay B&B had permission to build 6 rooms, but 25 rooms were occupied by guests. The hotel reportedly had no fire extinguisher. There were more than 40 guests inside the hotel. Many of them were apparently foreigners who were in the national capital for medical treatment.
1: शॉप खोलने के लिए आया तो यहाँ पर एक धुएं का बहुत बड़ा बवंडर गुबार आ गया जो दम घोटू था जिससे मेरा दम छुटा था तो सब्जी वाले से मैंने पूछा क्या हुआ भैया तो बोला लाला जी स्नैक लाइट में आग लग गई है तो स्नैक लाइट में आग लग गई है तो फिर हमने दुकान नहीं खोली हम लोग स्नैक लाइट की तरफ चले और लोकल लोगों के सपोर्ट लेकर के हमने वहाँ लोगों को किस तरह से बचाना है वो फटाफट जैसे माइंड में आया हमारे और हमने खिड़कियां तोड़ी दिनेश यादव बीट कांस्टेबल हमारे साथ था उसने अथॉरिटी का अरेंजमेंट करके खिड़कियां तोड़ी और फिर बहुत सारी खिड़कियां थी तो हमने ईंट के पत्थर उठा करके खिड़कियां तोड़ी वहां से लोग बाहर निकले हमने कहा लोगों को जम करो तो वो जम करने की हिम्मत नहीं हुई तो हम रियाजुद्दीन भाई हैं स्नैक लाइट के जस्ट सामने ही उनकी गद्दे रजाई की शॉप है तो उनसे हमने गद्दे लिए और गद्दे नीचे बिछाए हमने कहा अब कूदे और 4 जन जेंट्स कूदे लोग वहां पे जम करे जो माइनर इंजरी थोड़ी थोड़ी आई लेकिन वो सकुशल सब बच गए लोग पुलिस को और फायर को और एम्बुलेंसेज को कॉल कर रहे थे और जब तक फायर ब्रिगेड और पुलिस और एम्बुलेंस लोग आते तब से 10-12-15 लोग बच चुके थे उसके बाद फायर ब्रिगेड आई और आग अपना मंजर भयानक मंजर कर चुकी थी आग बहुत बढ़ चुकी थी कोई कोताही नहीं बरती थी कोई कहे कि राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ हो रहा था सबने मिलकर के सहयोग करा सबने मिलकर के टीम वर्क करा आस पड़ोस के लोगों ने सबने अपने दरवाजे खोल दिए हमें पानी पीने की जरूरत थी तो पानी भी मिला जो हमें चाहिए था हमें सब मिला समय रहते हमने लोगों को बचा लिया गया
2: 8 वेंटिलेटर पे हैं उनका इलाज चल रहा है वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं मेजॉरिटी ऑफ देम को वही एस्फिक्सिएशन वाली इंजरी हुई है जिसमें स्मोक की वजह से लंग्स में इंजरी हो जाती है इनमें से माइनर बर्न्स हैं सबके ज्यादा डीप बर्न्स नहीं है एक पेशेंट था जिसके 25% से ऊपर बर्न्स थे वो वेंटिलेटर पे था पेशेंट तो उसने बर्न्स वार्ड भी शिफ्ट कर दिया है 5 पेशेंट स्टेबल थे माइनर इंजरीज के साथ आए थे तो उनको इनिशियल फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देके वो डिस्चार्ज हो गए हैं
0: Prime Minister Modi has expressed his grief over the loss of lives. He's also announced a relief of about 2 lakh rupees for the next of kin of those who have been killed, while the injured will be given about 50,000 rupees each. The Delhi Chief Minister Rekha Gupta has also condoled the tragic loss of lives in the devastating fire incident. And according to the Delhi Chief Minister's office, a magisterial inquiry has also been ordered following the tragic blaze. And an FIR has been registered against the owner of the property. The Delhi Chief Minister's office has also ordered for a city-wide crackdown against illegal properties, unauthorized guest houses and establishments. Former West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, her party All India Trinamool Congress, is on the brink of a split. This is internal rift has widened nearly a month after the party's major defeat in the West Bengal elections. The party has dissolved all its committees and frontal organizations in the state. In a social media post, TMC declared that it will undertake a comprehensive exercise of introspection, performance review and organizational assessment at every level. It further said that the units within the party will be reconstituted based on the findings. Meanwhile, the expelled TMC MLA and the rebel leader, Ritabrata Banerjee, has elected the new leader of opposition in the state, with the support of about 58 other rebel MLAs. However, he has urged Mamata Banerjee to serve as the party's chief advisor.
3: Team of the Trinamool Congress West Bengal Legislative Assembly. This legislator party doesn't believe in I, it believes in we. Whatever norms are framed out, we have followed every norms, and that's why we have been accepted as the principal opposition in this 18th West Bengal Legislative Assembly.
0: And earlier, the expelled Banerjee met with the West Bengal Assembly Speaker Ratindra Bose and submitted support letter signed by nearly 60 MLAs, including senior